0: Extreme energy drink.
1: 아니, 땅 가게에 매치니와 아, 질까이? 그의 personal number block live 어디? पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बाई अफिसर आएर ब्लगलाई र खर्खाए अनि ब्याङ्करी बैङ्करी सर चाहिँ तली लग पर्दी चम्लल पर्दी न आफै न मोबाइल नम्बर फेरिया बढेर ब्लग तयाइ दिशा आफै न ब्याङ्क दिए पनि जानकारी पिन पर्यम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी दक्या सचेत तल पर्यम
2: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ ब्याङ्करले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई